गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर. उठा उठा, सकाळ झाली आहे, बॅक टू वर्क करायची वेळ आलेली आहे. तुम्ही ट्यून केलं MCM 90.8 FM, RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे आणि वार आहे सोमवार. सोमवारची ही मंद मंद स्लो स्लो आणि फास्ट असणारी सुद्धा सकाळ आहे, बिकॉज मंडे का एक ऐसा दिन होता है जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, फिर भी वो डे हमें गुजारना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड मंडे. ऐसा मेरा ओपिनियन है. और कहते ना कि यार हर एक चीज की एक नई शुरुआत होती है, तो अधूरे कामों की, कुछ पिछले हफ्ते हुए हुए कुछ गलत चीज़ों की एक नई शुरुआत करते हैं, और इसीलिए मंडे आता है. देखो अगर मंडे आएगा तब जाके पूरा वीक आएगा और आपको वीकेंड का सुकून मिलेगा, इसीलिए पहले मंडे तो गुजारना ही पड़ता है. और हाँ, आज का मंडे आपका ऐसा स्ट्रेस भरा वगैरह नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि आज आपको एंटरटेनमेंट का तड़का तो मिलने ही वाला है मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ. सो आज के शो का आगाज करते हैं, कुछ मेरी और कुछ आपकी बात करते हैं, और बातों को जरा ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए आपको सुनने हैं एक बेहतरीन से बेहतरीन गाने, तो वही अभी हम प्ले करेंगे, जिससे आपका मंडे वाला मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा. आणि आपल्या मराठी इंडस्ट्री मध्ये असे सुपर डुपर हिट गाणे आहेत ना, जुने नवीन, जे की ऐकल्यावर आपण एक वेगळ्या दुनियेत जात असतो. चला तर मग ही महफिल सुरुवात करूयात, थोड्या वेळात पुन्हा एकदा भेटूयात आपण, तोपर्यंत एन्जॉय करायला सुपर डुपर हिट गाणी ओनली ऑन MCM 90.8 FM.

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: करावे माझे तुझ्या मनवर सरीवर सर सरीवर सर सरीवर सर सर सर सर सरीवर सर सरीवर सर
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिलते हैं ना किसी किताब से बल्कि एक आम इंसान से। एक दिन सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, ट्रैफिक भी था, दिमाग भी गर्म था। जल्दी में एक ऑटो रोका और बैठ गया। पूरी राइड के दौरान मैं बस घड़ी देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, यार आज का दिन तो खराब शुरू हुआ। एक सिग्नल पर ऑटो रुक गया, मैं और भी परेशान हो गया। तभी ऑटो वाले भैया मुस्कुराकर बोले, साहब सिग्नल पर गुस्सा करने से सिग्नल जल्दी ग्रीन नहीं होता, लेकिन आपका मूड जरूर रेड हो जाएगा। मैं बस उनकी तरफ देखने लगा। फिर वो बोले, जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है और कुछ नहीं। जो नहीं बदल सकते उस पर गुस्सा करके सिर्फ अपना सुकून खोते हैं हम। सिग्नल ग्रीन हुआ, ऑटो आगे बढ़ गया, लेकिन उस दिन मेरी सोच भी आगे बढ़ गई। ऑफिस पहुंचते पहुंचते मुझे एहसास हुआ, मैं हर छोटी बात पर अपनी खुशी गिरवी रख देता हूँ। ट्रैफिक, लाइन, डिले, लोग, ये सब तो हमेशा ही रहेंगे, पर मेरा रिएक्शन वो सिर्फ मेरे हाथ में है। उस दिन एक ऑटो वाले भैया ने कोई बड़ी डिग्री हमें नहीं दिखाई थी, बस एक सीधी सी बात कहकर पूरे दिन का नजरिया बदल दिया था। तो दोस्तों, आज अगर जिंदगी आपकी किसी रेड सिग्नल पर रुक दी गई है तो याद रखना, हर रुकना हारना नहीं होता है। कभी कभी जिंदगी सिर्फ इतना कह रही होती है, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे लिए भी ग्रीन सिग्नल आने ही वाला है।
2: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है और life को good बनाने के लिए healthy रखना भी बहुत जरूरी है. हम सब जानते हैं कि पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉडी हमें पानी की कमी की सिग्नल देती है और हम अक्सर उन्हें इग्नोर करते हैं. सबसे पहला सिग्नल क्या होता है? बार बार सर दर्द होना. कभी कभी हेडेक का रीजन स्ट्रेस नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. दूसरा साइन क्या है? हर वक्त थकान और लो एनर्जी. जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो आप सुस्त और थके थके महसूस कर सकते हैं. तीसरा सिग्नल क्या है? ड्राई स्किन और ड्राई लिप्स. अगर स्किन और होंठ बार बार सूख रहे हैं तो सिर्फ क्रीम ही नहीं पानी भी जरूरी होता है. और एक बात दोस्तों, अगर यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो हो तो ये भी इस बात का इशारा हो सकता है कि बॉडी को और पानी की जरूरत है. इसलिए प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए. अगर आप बाहर गर्मी में काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बॉडी को और भी ज्यादा फूड की जरूरत होती है उस वक्त. लेकिन याद रखिए, हर इंसान की पानी की जरूरत अलग होती है. मौसम, एक्टिविटी लेवल और हेल्थ के हिसाब से ये बदल सकती है. तो आज का हेल्दी मंत्रा क्या है? इतना ही है कि जब बॉडी छोटे सिग्नल दे उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए. कभी कभी एक गिलास पानी ही सबसे अच्छी मेडिसिन बन जाती है. तो ये चीज याद रखिए, सेहत की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी आदत से होती है और उनमें से एक है सही मात्रा में पानी पीना.

0: good morning friends, you are listening MGM 90.8 FM. All is और क्या है ना, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो जिंदगी ऑल इज वेल हो ही जाएगी। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है एमजीएम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम। तो मैम के साथ हम इस वीक ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम, नॉर्मल सोचना और ओवर थिंकिंग करना, इसमें फर्क क्या है, ये बताइए हमें।
1: अगर हम नॉर्मल सोच रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि हम वो बात समझेंगे और हम शायद सोल्यूशन भी, वी विल अराइव एट सम सोल्यूशन, हम सोल्यूशन भी निकाल लेंगे उस चीज का। लेकिन हम जब ओवर थिंक कर रहे हैं तो हम बस सोचते रहते हैं, हम किसी सोल्यूशन पे ही नहीं पहुंच पाते। तो ये बार बार बार बार सोचना, ये जो लूप बन जाना, बस हम उसी लूप में घूमते रहते हैं। तो इन शॉर्ट कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें इसी बात से पता लगता है कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं क्या हम वो समझ पा रहे हैं और समाधान ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
0: So exactly, ओवर थिंकिंग कैसी होती है, नॉर्मल सोच ओवर थिंकिंग में क्या फर्क है, ये अभी हमने जाना। So ऐसी और भी टिप्स अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ओवर थिंकिंग के बारे में हम हर दिन मैम से जानेंगे अपने इस शो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए आरजे अदनान आपके साथ आया है इन द शो ऑल इज वेल। सो आज गाने की फरमाइश आई है हमारे साथ मुख्तार शेख की तरफ से इस गाने के लिए।

क्या बात है ए जिंदगी गले लगा ले। तो चलिए फिर मुख्तार जी की फरमाइश पर ये गाना भी हम प्ले करने वाले हैं। बाय द वे दोस्तों, आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हम तक आप पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 9359320080। सो फरमाइश पर आप ये गाना हम प्ले करेंगे, आप भी बताते रहिए।

फिलहाल बरसात ने थोड़ा ब्रेक लिया है, आई थिंक उसको भी थोड़ा ब्रेक की जरूरत थी, इस वजह से कुछ दिन के लिए वो अपनी छुट्टियां मनाने गई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और बरसात का क्या हुआ है, उसे एक ऑफिस के एम्प्लॉय जैसा, जो कि साल भर इतना काम नहीं करेगा लेकिन कुछ दिन में इतना काम करेगा कि फिर लंबी छुट्टी पर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से बारिश का भी हो गया है। कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से बरसात बरस रही थी, 8-1 दिन बहुत अच्छी बारिश हुई, उसके बाद फिर गायब भी हो गई, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और इस वजह से अपने शहर का हल्का सा टेम्परेचर भी बढ़ गया है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का। सवाल उठता है क्या वापस से बरसात कब आएगी अपनी छुट्टियां मनाकर, तो एक्सपर्ट का कहना है कि 17 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा माहौल और उसके बाद 17 जुलाई के बाद बारिश फिर से बैक टू रूटीन पर आ जाएगी और जोरदार बरसात हो सकती है अपने शहर में भी। तो 17 जुलाई तक अभी बरसात छुट्टियां मनाने गई है ऐसा हम समझ सकते हैं। और अब तक अपने शहर में कितनी बरसात हो गई है, तो 1 जुलाई से लेकर, और जायकवाड़ी डैम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बरसात का असर इस पर भी हुआ है और थोड़ा सा क्यों ना हो लेकिन पानी का लेवल इसका बढ़ चुका है। सो ये मौसम का अपडेट याद रखिए और सुनते रहिए।

0: लगभग सभी बच्चे ना तो स्कूल को आज के वक्त में स्कूल बस से ही जाते हैं, और स्कूल बस के लिए अब नए रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 FM, और ये रूल्स और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी स्कूल बस को ये फॉलो करना लाजमी है। अगर फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो रूल्स क्या है, देखो यार, स्कूल बस हो या फिर वैन हो, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाना कंपलसरी है और इससे सेफ्टी हो सकती है। तो इस वजह से कहा गया है कि तीन चीजें सबसे अहम है। स्कूल बस में जितनी सीट है तो उन हर एक सीट पर सीट बेल्ट लगाना भी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर हर बस में होना चाहिए। स्कूल के लिए नया रूल आ चुका है कि पूरे साल के पैसे वसूल करते थे स्कूल बस के, वैसा वसूल करते नहीं आएंगे, उनको मंथली ही पे करना पड़ेगा स्कूल बस को। वरना कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि यार पूरे साल का स्कूल बस का किराया एक वक्त में ही भरना पड़ता था, तो ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप मंथली भी पे कर सकते हो। एंड जो स्कूल बस ड्राइवर है तो उसका मेडिकल चेकअप कंपलसरी हो चुका है, और जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेशल सुविधा भी होनी चाहिए स्कूल बस में। तो ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन ये नए लागू किए गए स्कूल बस के लिए। तो इस तरीके से आप जितने भी स्कूल बस है ना, तो उन्होंने अपने गाड़ियों को मॉडिफाई करना चाहिए एंड बच्चों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, सभी पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि आप भी वक्त पर चेक करते रहिएगा कि आपके बच्चे जिस स्कूल बस से जा रहे हो तो स्कूल बस के अंदर ये सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो आप इसकी कंप्लेंट स्कूल में कर सकते हो और स्कूल को भी इस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। सो ये चीजें याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा।

आपने कभी ऊंट की सवारी की है क्या? जिसने की है वो जानता है कि उस सवारी के दरमियान किस तरीके का अप डाउन हमें सहन करना पड़ता है। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। अगर आपको ऊंट की सवारी करनी है ना, तो आप अपने सेंट्रल बस स्टैंड में जाकर भी ऊंट की सवारी कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर के रोड कुछ इस तरीके से बने हैं कि उस रोड के ऊपर से आपने गाड़ी चलाई या तो वहाँ से बस अगर गुजरती है ना, तो हमें महसूस होता है कि हम बस में नहीं बैठे हैं, हम ऊंट पर बैठे हैं। क्योंकि ऐसे डिक्की चिक्की करते हुए वो वहाँ से बस गुजरती है, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हो चुके हैं और इतना रोड क्लीन हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक नया मोमेंट हमें हासिल होता है सवारी का, सफर का। तो इसे कहते हैं एक अलग इनिशिएटिव लेना। आता लोग मदला रही है तर खड्डे हेचत का या सस वेगळेपण भाऊ ते खड्डे नाही, दैट्स कॉल्ड समथिंग स्पेशल रास्ता। देखो भाई, मेरी इंग्लिश जैसी टूटी फूटी है ना, तो उससे भी टूटे फूटे अपने शहर के रास्ते है। तो शहर के रास्ते का तो हम सभी को पता है, लेकिन उससे भी डेंजर रास्ते और एरिया अपने सेंट्रल बस स्टैंड का है। मेरी बात पर आपको शक होगा ना, तो एक बार आप वहां पर जाकर देखिएगा। आपको इसका मजा नहीं आया ना, तो पैसे आप वापस ले सकते हो। खैर, आप क्या ही बोले। और हाँ, पिछली बार कहा गया था कि सेंट्रल बस स्टैंड का रिनोवेशन होने वाला है और पूरी तरीके से बस स्टैंड हमें नए रूप में दिखाई देगा। भाई कहाँ हो गया वो रिनोवेशन? कहीं हुआ है, दिखाई दिया है? नहीं ना। हाँ, बस कागज पर ही रिनोवेशन हुआ है शायद से, बाकी तो बस चलता है बोल के चलता ही आ रहा है। बस यहाँ के रास्ते नहीं, पूरा सेंट्रल बस स्टैंड ही खराब हो चुका है। काम कब होगा रिनोवेशन का, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जवाब मिले तो मुझे जरूर बताना। और ना, अगर ऊंट की सफारी करनी है तो सेंट्रल बस स्टैंड में जरूर जाकर आना। स्टे ट्यून्ड।

93.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well. RJAdnan, the morning show. Freshness, light radio, come flow. On MGM 90.

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Ananika morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MTM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MTM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DM कीजिए का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका सोमवार अच्छा रहा होगा। वीकेंड की यादें अभी ताज़ा होगी, लेकिन अब एक नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। अगर आज का दिन थोड़ा व्यस्त रहा है तो कोई बात नहीं, अब समय है थोड़ा रिलैक्स करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों के साथ इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने का। कहते हैं हर नया सोमवार अपने साथ नई उम्मीदें और नए मौके लेकर आता है, इसलिए बीते हुए दिन की टेंशन को यही छोड़ दीजिए और आने वाले दिनों के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत कीजिए। तो बताइए आपका सोमवार कैसा रहा, क्या आज कुछ नया सीखा, कोई छोटी सी खुशी मिली या फिर बस दिन भाग दौड़ में निकल गया। जो भी हो इस शाम को अपने नाम कीजिए और हमें भी अपना साथ दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर, आवाज़ थोड़ा और तेज़ कर लीजिए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत शाम का पूरा मजा लीजिए। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी इस सफर में बहुत सारी शानदार बातें और बेहतरीन गाने बाकी है। इन दिशो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। नई शाम, नया जोश और नए हफ्ते की नई शुरुआत। उम्मीद है आपका सोमवार अच्छा बीता होगा। कई लोगों के लिए सोमवार थोड़ा भारी लगता है, लेकिन अगर सोच बदल जाए तो यही दिन नई शुरुआत का सबसे अच्छा मौका बन जाता है। जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, कई बार रोज का एक छोटा सा प्रयास ही हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। इसलिए अगर आज कुछ वैसा नहीं हो पाया जैसा आपने सोचा था तो खुद को निराश मत कीजिए। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है और हर सोमवार एक नई शुरुआत। आज खुद से बस एक छोटा सा वादा कीजिए, इस हफ्ते शिकायतें कम और कोशिशें ज़्यादा करेंगे। हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपने सपनों के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा बनाए रखेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। रुकना ठीक है, लेकिन हार मानना ये सही बात नहीं है। तो इस पूरे हफ्ते की शुरुआत एक मुस्कान और एक पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। यकीन मानिए, जब सोच अच्छी होती है तो रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आप लोग कहीं मत जाना। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आसमान।
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय आते ही एक सवाल लगभग हर घर में सुनाई देता है, कुछ खाने को है क्या? और सच कहे तो शाम की हल्की फुल्की भूख बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इस समय क्या खाना चाहिए या क्या खाया जाए ये भी उतना ही जरूरी है। अगर शाम को बहुत देर तक कुछ नहीं खाते तो रात के खाने में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। वही अगर हर रोज तली भुनी चीजें या बहुत ज्यादा मीठा खाया जाए तो शरीर पर उसका असर दिखता है। इसलिए कोशिश कीजिए शाम के स्नैक्स हल्के और पौष्टिक हो, जैसे फल, भुना चना, स्प्राउट्स, मखाना, ड्राई फ्रूट्स या फिर एक सैंडविच। साथ में एक कप चाय या कॉफ़ी हो तो शाम का मज़ा ही अलग हो जाता है। याद रखिए स्नैक्स का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को थोड़ी ऊर्जा देना भी है, ताकि दिन की बची हुई जिम्मेदारियां भी आसानी से पूरी हो जाए। तो आज शाम अपनी पसंद का कोई हेल्दी स्नैक चुनिए, अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, इस खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। अब इसी शानदार एहसास के साथ सुनने वाले हैं हम एक बेहतरीन गाना ओनली ऑन एमजे 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बातें हमें एक छोटे से एहसास से याद आती है और ऐसा ही एक एहसास है आ अब लौट चले ये सॉन्ग। लौटना सिर्फ किसी जगह पर वापस जाना नहीं होता बल्कि उन रिश्तों उन यादों उन लोगों तक पहुँचना भी होता है जो हमारी ज़िंदगी को खास बनाते हैं। कभी बचपन की गलियों में कभी दोस्तों की हंसी में तो कभी परिवार के साथ बिताए उन छोटे छोटे पलों में जहां सुकून अपने आप मिल जाता है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सब बहुत कुछ पाने की कोशिश में लग जाते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा रुक कर अपने लोगों के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। एक फ़ोन कॉल एक मुलाकात या बस दिल से पूछा गया एक सवाल कैसे हो किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकता है। तो इस शाम अगर कोई अपना बहुत दिनों से याद आ रहा है तो उनसे ज़रूर बात कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी पहल किसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आए और अब इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे गाने की ओर जो में अपनों और यादों की ओर लौटने का मैसेज देता है। सुनिए इन द शो दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक आरोग्य तपासणी उपचार शस्त्रक्रिया लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6 कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130 एमजीएम पेट केअर।
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी to visit MGMU

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आर्ज मनीषा आपके साथ। कैसा रहा आपका सोमवार? अगर आपका जवाब है बहुत बिजी तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। सोमवार अक्सर ईमेल, मीटिंग्स, कॉलेज, ऑफिस, ट्रैफिक और ढेर सारे कामों के साथ शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा हफ्ता पहले दिन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन इस भागदौड़ के बीच एक बात याद रखिए, बिजी होना अच्छी बात है लेकिन खुद के लिए दो पल निकालना भी उतना ही जरूरी है। दिन में 5 मिनट की चाय, एक छोटी सी मुस्कान, किसी अपने से दो बातें या फिर आपका पसंदीदा गाना, ये छोटी छोटी चीजें पूरे दिन की थकान कम कर देती है। सोमवार सिर्फ काम का दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते की दिशा तय करने का भी दिन है। अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा तो परेशान मत होइए, अभी पूरा हफ्ता आपके सामने है। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है, तो इस शाम ऑफिस की फाइलें, पढ़ाई का तनाव और दिन भर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए। खुद को रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। हम आपके साथ हैं बेहतरीन गाने और दिलों से जुड़ी बातों के साथ। तो मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर इस वक्त आप सड़क पर हो और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो सबसे पहले एक मुस्कान रखिए, क्योंकि यकीन मानिए आज मंडे इवनिंग में आप अकेले नहीं हैं। सोमवार की शाम का ट्रैफिक अपने आप में एक कहानी होता है। कोई ऑफिस से घर लौट रहा है, कोई कॉलेज से, तो कोई दिन भर की भागदौड़ के बाद बस अपने घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ें, रेड सिग्नल और धीरे धीरे आगे बढ़ती गाड़ियाँ, ये सब शायद हर शहर की सोमवार की शाम की पहचान बन चुकी है। लेकिन अगर ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में नहीं है तो अपना मूड तो हमारे कंट्रोल में हम कर ही सकते हैं। इसलिए गुस्सा करने के बजाय थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपनी पसंद का संगीत सुनिए, गहरी सांस लीजिए और सुरक्षित ड्राइव कीजिए। याद रखिए, घर पहुंचने की जल्दी से ज़्यादा ज़रूरी है सही सलामत घर पहुंचना। और अगर आप घर पहुँच चुके हैं तो थोड़ा आराम कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और दिन भर की थकान को यही छोड़ दीजिए। आखिर कल एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा है, तो चाहे आप ट्रैफिक में हो या घर की आरामदायक कुर्सी पर, हम हैं आपके साथ बेहतरीन गानों और दिल से जुड़ी बातों के साथ। चलिए अब इसी ट्रैफिक टेंशन को थोड़ा हल्का करते हैं एक शानदार गाने के साथ। आवाज़ ज़रा बढ़ाइए, मुस्कुराइए और जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार की शाम है और नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। अक्सर हम पूरा हफ्ता बिना किसी प्लान के शुरू कर देते हैं और फिर शुक्रवार आते आते लगता है कि पता ही नहीं चला समय कहाँ निकल गया। इसलिए क्यों ना आज हम सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें, आराम से बैठिए और सोचिए कि इस हफ्ते आपको क्या क्या करना है, कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, किससे मिलना है, क्या नया सीखना है और सबसे अहम अपने लिए थोड़ा वक्त कब निकालना है। याद रखिए, एक अच्छा प्लान सिर्फ काम पूरा करने के लिए नहीं होता बल्कि ज़िंदगी में बैलेंस बनाए रखने के लिए होता है। काम भी ज़रूरी है लेकिन परिवार, दोस्त, सेहत और अपनी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है। और हाँ, अपने प्लान में एक छोटी सी जगह मुस्कुराने के लिए भी रखिए, क्योंकि जब मन खुश होता है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। तो इस सोमवार की शाम खुद से एक वादा कीजिए, इस हफ्ते जल्दबाजी नहीं, समझदारी से आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे गोल अपनाएंगे, उन्हें पूरा करेंगे और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त है अगले शानदार गाने का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अच्छा संगीत और अच्छी बातें पूरे हफ्ते को और भी खूबसूरत बना देगी। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते देखते सोमवार की शाम भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। सुबह से शुरू हुई भागदौड़, ऑफिस की मीटिंग्स, कॉलेज की क्लासेस, ट्रैफिक और दिन भर की व्यस्तता अब धीरे धीरे पीछे छूट रही है। अगर आज आपका दिन शानदार रहा तो उस खुशी को अपने साथ रखिए, और अगर दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं बीता तो उसे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि हर डूबता हुआ दिन अपने साथ एक नई सीख लेकर जाता है और हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। अब समय है खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का। अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताइए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए या बस एक कप चाय के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कह दीजिए। याद रखिए, जिंदगी में हर सोमवार हमेशा मुश्किल नहीं होता। कई बार यही सोमवार हमें पूरे हफ्ते के लिए नई दिशा और नया हौसला भी देता है। तो चलिए इस सोमवार की शाम को एक मुस्कान के साथ विदा कहते हैं और आने वाला मंगलवार का खुले दिल से स्वागत करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसकी तैयारी जोर शोर से कीजिए। फिलहाल संगीत का सिलसिला जारी है, अगला गाना भी आपके इस खूबसूरत सफर का साथी बनने वाला है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड बाय मंडे, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।

फिलहाल बरसात ने थोड़ा ब्रेक लिया है, आई थिंक उसको भी थोड़ा ब्रेक की जरूरत थी, इस वजह से कुछ दिन के लिए वो अपनी छुट्टियां मनाने गई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम, आरजे अदनान आपके साथ है। और बरसात का क्या हुआ है, उसे एक ऑफिस के एम्प्लॉय जैसा, जो कि साल भर इतना काम नहीं करेगा लेकिन कुछ दिन में इतना काम करेगा कि फिर लंबी छुट्टी पर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से बारिश का भी हो गया है। कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से बरसात बरस रही थी, 8-1 दिन बहुत अच्छी बारिश हुई, उसके बाद फिर गायब भी हो गई, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और इस वजह से अपने शहर का हल्का सा टेम्परेचर भी बढ़ गया है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का। सवाल उठता है कि वापस से बरसात कब आएगी अपनी छुट्टियां मनाकर, तो एक्सपर्ट का कहना है कि 17 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा माहौल और उसके बाद 17 जुलाई के बाद बारिश फिर से बैक टू रूटीन पर आ जाएगी और जोरदार बरसात हो सकती है अपने शहर में भी। तो 17 जुलाई तक अभी बरसात छुट्टियां मनाने गई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और अब तक अपने शहर में कितनी बरसात हो गई है, तो 1 जुलाई से लेकर और जायकवाड़ी डैम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बरसात का असर इस पर भी हुआ है और थोड़ा सा क्यों ना हो लेकिन पानी का लेवल इसका बढ़ चुका है। सो ये मौसम का अपडेट याद रखिए और सुनते रहिए।

लगभग सभी बच्चे ना तो स्कूल को आज के वक्त में स्कूल बस से ही जाते हैं, और स्कूल बस के लिए अब नए रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम, और ये रूल्स और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी स्कूल बस को ये फॉलो करना लाजमी है। अगर फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये रूल्स क्या है, देखो यार, स्कूल बस हो या फिर वैन हो, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाना कंपलसरी है, और इससे सेफ्टी हो सकती है। तो इस वजह से कहा गया है कि तीन चीजें सबसे अहम है। स्कूल बस में जितनी सीट है तो उन हर एक सीट पर सीट बेल्ट लगाना भी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर हर बस में होना चाहिए। स्कूल के लिए नया रूल आ चुका है कि पूरे साल के पैसे वसूल करते थे स्कूल बस के, वैसा वसूल करते नहीं आएंगे, उनको मंथली ही पे करना पड़ेगा स्कूल बस को। वरना कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि यार पूरे साल का स्कूल बस का किराया एक वक्त में ही भरना पड़ता था, तो ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप मंथली भी पे कर सकते हो। एंड जो स्कूल बस ड्राइवर है तो उसका मेडिकल चेकअप कंपलसरी हो चुका है, और जो हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल सुविधा भी होनी चाहिए स्कूल बस में। तो ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन ये नए लागू किए गए स्कूल बस के लिए। तो इस तरीके से आप जितने भी स्कूल बस है ना, तो उन्होंने अपने गाड़ियों को मॉडिफाई करना चाहिए एंड बच्चों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, सभी पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि आप भी वक्त पर चेक करते रहिएगा कि आपके बच्चे जिस स्कूल बस से जा रहे हो तो स्कूल बस के अंदर ये सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो आप इसकी कंप्लेंट स्कूल में कर सकते हो, और स्कूल को भी इस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। सो ये चीजें याद रखिएगा एंड स्टे।

आपने कभी ऊंट की सवारी की है क्या? जिसने की है वो जानता है कि उस सवारी के दरमियान किस तरीके का अप डाउन हमें सहन करना पड़ता है। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। अगर आपको ऊंट की सवारी करनी है ना, तो आप अपने सेंट्रल बस स्टैंड में जाकर भी ऊंट की सवारी कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर के रोड कुछ इस तरीके से बने हैं कि उस रोड के ऊपर से आपने गाड़ी चलाई या तो वहाँ से बस अगर गुजरती है ना, तो हमें महसूस होता है कि हम बस में नहीं बैठे, हम ऊंट पर बैठे, क्योंकि ऐसे डिक्की चिक्की करते हुए वो वहाँ से बस गुजरती है, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हो चुके हैं और इतना रोड क्लीन हो चुका है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक नया मोमेंट हमें हासिल होता है सवारी का, सफर का। तो इसे कहते हैं एक अलग इनिशिएटिव लेना। आता लोग मदला रही है तर खड्डे हेचत का या तस वेगळेपण भाऊ उत्ते खड्डे नाही, दैट्स कॉल्ड समथिंग स्पेशल रास्ता। देखो भाई, मेरी इंग्लिश जैसी टूटी फूटी है ना, तो उससे भी टूटे फूटे अपने शहर के रास्ते हैं। तो शहर के रास्ते का तो हम सभी को पता है, लेकिन उससे भी डेंजर रास्ते और एरिया अपने सेंट्रल बस स्टैंड का है। मेरे बात पर आपको शक होगा ना, तो एक बार आप वहां पर जाकर देखिएगा। आपको इसका मजा नहीं आया ना, तो पैसे आप वापस ले सकते हो। खैर, आप क्या ही बोले। और हाँ, पिछली बार कहा गया था कि सेंट्रल बस स्टैंड का रिनोवेशन होने वाला है और पूरी तरीके से बस स्टैंड हमें नए रूप में दिखाई देगा। भाई कहाँ हो गया वो रिनोवेशन? कहीं हुआ है, दिखाई दिया है? नहीं ना। हाँ, बस कागज पर ही रिनोवेशन हुआ है शायद से, बाकी तो बस चलता है बोल के चलता ही आ रहा है। बस यहाँ के रास्ते नहीं, पूरा सेंट्रल बस स्टैंड ही खराब हो चुका है। काम कब होगा रिनोवेशन का, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर जवाब मिले तो मुझे जरूर बताना। और अगर ऊंट की सफारी करनी है तो सेंट्रल बस स्टैंड में जरूर जाकर आना। स्टे ट्यून्ड।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: इसको देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हज़ार

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है